0: हेलो।
1: हाँ बनाई थी। हाँ
0: बानो इते कहाँ ऐसे ना
1: निकिन्ना मनो ओरिजिनल है।
0: अने किन्ना
1: हाँ मनो ओरिजिनल है।
0: अल्लाह उलोई
1: अयोलो चिन्ना
0: अहे और यो लोटा है इनसे पोषण पहला हुई हुआ
1: नंबर दोष
0: नंबर दोष
1: ए
0: नंबर दोष नो मिस्टर रेका
1: बाबू
0: यहाँ शुक्र है ना
1: मम्मी कॉफी चला मुकर
0: आई माय मसे तो कौन निंतला उस इंसान लगाई हुआ है ना ठंडी वाला नंदी ला
1: प्रॉब्लम
0: हाय
1: बाबा
0: निहा शुक्रेला
1: मुकर